क्यों चलो वृंदावन की ओर चलते हैं, वहाँ पे माखन मिश्री मलाई रबड़ी सब कुछ मिलता है।

0: यार नाटक ना कर, नच ना यार, नच ना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नच ना, भैन दी सगाई च तो भाई नू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ओए ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।
6: You're tuned in to the Weekend Explosion on Lotus FM.

नबी का मुकद्दस मदीना है प्यारा, बोस डेफिनेटली मदीना तो रसूल इज समथिंग एल्स, एंड दैट इज ऑफ कोर्स हाफिज साहब जो बड़े बेहतरीन अंदाज में इस कलाम को पेश कर रहे थे, हाफिज जुबेर साहब. वी हैव अ मैसेज फ्रॉम भाई वसीम, वसीम ऑफ यूनिट 17 मस्जिद आयशा, दैट्स इन फिनिक स्टैनमो. यस स्टैनमो, एंड ऑफ कोर्स ही सेंड्स अ मैसेज, एंड one of the very long serving imams of Masjid Aisha in Phoenix, and that is our Hafiz Okari Shabir Patel sahab. Sadly he is not unwell and he has been hospitalized, and special duas are requested for our Hafiz Okari Shabir Patel sahab. Allah Rabbul Izzat grant him shifa kamila inshallah aziz, and get him well as quickly as possible, and all those that are unwell, Allah Rabbul Izzat have mercy on each and every one of them, inshallah aziz. Let's listen to Hamd Bari Ta'ala.

दिल ख्वाजा का दीवाना हो गया। यस ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा जी मेरी अली रहमा की बेर किस पना में हमारे आमिल आरिफ साबरी की आवाज थी। ही इज गोइंग टू बी इन साउथ अफ्रीका टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एज अ गेस्ट ऑफ द चिश्ती ग्रुप इन प्रिटोरिया अंडर द गाइडेंस ऑफ जनाब मोहिदीन साहब द हसन मोहिदीन साहब एंड ही इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू फॉर शोज ऑन ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स इन साउथ अफ्रीका सो यू कैन कॉन्टेक्ट हसन मोहिदीन साहब एंड शुक्रिया जजाकल्लाह टू एवरी वन ऑफ यू दैट आर सेंडिंग सच ब्यूटिफुल मैसेज अकी खान सेज ही इज इन लव विद ख्वाजा साहब एंड आई नो यू आई लव विद ख्वाजा साहब और साथ ही साथ हमारे एक बड़े अच्छे कर्म फरमाए एन एल्डर ब्रदर ऑफ माइन ए मैन एंड बोथ ऑफ अस इन द सेम सिलसिला एज वेल एंड मेरा इशारा है हमारे हाजी मोहम्मद इब्राहिम इस्माइल चिश्ती कादरी मदजुलाली वन ऑफ द एल्डर्स 90 इयर्स यंग यस ही इज 90 इयर्स यंग इट वाज हिज बर्थडे यस्टरडे एंड ही इज द रिस्पेक्टेड फादर ऑफ इमरान मलंग एंड अवर जनाब रिदवान इस्माइल साहब एंड वी मेक दुआ दैट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक्सटेंड्स हिज लाइफ कीप्स हिज साया ऑन अस फॉर मेनी मेनी मोर इयर्स टू कम एंड ऑल्सो ही इज अ लवर ऑफ द औलिया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग्रांट हिम गुड हेल्थ हाजी इब्राहिम साहब हमारी मोहब्बत हमारी दुआ आपके साथ है शुक्रिया पाकिस्तान निजामी ऑल्सो फॉर ट्यूनिंग इन एज वेल तो आइए अब हम बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज अली रहमा की बेकसपना में चलते हैं एंड आई नो ऑल द मलंगदार्स आर वेटिंग हवा हमारे इमरान मलंग साहब एंड मलंग हुसैन एंड मलंग सिकंदर आर ट्रैवलिंग टू बेनोनी एंड दे लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड ऑल द मलंगदार्स एंड एवरीवन द लवर्स ऑफ ख्वाजा ऑफ बाबा साहब हमारे महमूद शेख चिश्ती और जितने भी उनके चाहने वाले हैं पाकिस्तान निजामी एंड द एंटायर क्राउड तो खास आप लोग के लिए एंड हमारे बोत्सवाना के रहने वाले भी हमारे जनाब साहब वहाँ के भी शुक्रिया ये आप लोग की मोहब्बत है ऑल स्पेशली फॉर योर

दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।